नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन, आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आला।

Hírvaége. És áll a hely. És van gitarom. Allah gitarom. आप ही हमारी नाव पार कर सकते हैं।